नानक कस मल जाए कस मल जाए हर गां नानक कस मल जाए गवन गवर बम पर गर नील गरे रे मदा जाने दबा दबा दबा मबा रे गजारे दरगर दानी रे दादर गर दानी रे दादर

पार्स पेट पर्स करो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुर सिर हत्तरियो कसमल जाय हर घनन कसमल जाय हर घनन के।

रामदास सई। गुरु अमर गुरु की सत, गुरु अमर गुरु श्री सत, कल जुग राखी पत, अग्नि देखत गत, चरण कमल दास, चरण कमल दास, सब विद मान्यो मन, तभी भयो प्रसन्न, गुरु जोग तख्त दियन, गुरु रामदास, ना ये रामदास सरी, ना ये रामदास, ना ये रामदास सरी, दस सरी दस सर, ना ये रामदास सरी, ना ये रामदास सरी, हम

रघुवंश तिलक दशरथ कारी मन बाछे ताकी शरणं। रघुवंश तिलक दशरथ कारी मन बाछे ताकी शरणं। सतगुर सेव अलखगत जाकी।

बाबा फरीद जी एक बार रसना पवित्र करो ते आखो प्यार नाल सतनाम श्री वाहे। इत्थे एक शब्द आया है जे ते नाला कपिया नाला उसनू कहंदे ने। पाकिस्तान दे विच जदों तुसी लेंदे पंजाब विच जाओ लेंदा पंजाब मुल्तान चंग सरगोदा लैलपुर ए लेंदा पंजाब है। बाबा फरीद जी कहंदे ने इतना दुख है इस संसार च ते नाला कहंदे ने।

हाथ जोड़ के पिता नू कहन लगी, पिता जी तुहाडा ते कोई कसूर नहीं, जे अकाल पुरख ने मेरी झोली च ही सुहाग नहीं पाया ता तुसी कित्थों पाओगे। वैराग दे विच आके इन्हें अपने पिता की झोली दे विच बैठी हुई पिता दे वस्त्र कपड़े भेज दिते। बड़ा वैराग आ रहा सी ते कह रही सी, हे परमात्मा जे तू मेरा घर ही नहीं सी वसाना ते तू मैनू इतना नेक क्यों बना दिता। राजे दे घर जन्म दे के कहंदे ने कि राजे दे घर मोतियां दा काल नहीं हुंदा, पर कहंदे ने कि जिस नूं परमात्मा ना देवे भावें बादशाह दे घर जन्म लै लवे। हजूर कहंदे ने बाली रोवै ओ बाली ओ लड़की, ओ बड़ी दुखी होके रो रही सी, पर जदों उसने देखिया कि सारा संसार ही दुखी है, एक महापुरुष ने आके इस बच्ची नूं दिलासा दिता। वो कहन लगे, बेटा तेरा तां घर वसिया ही नहीं, इत्थे तां ऐसे ऐसे लोक पए ने जिन्हां दा वसदा है ते फिर उजड़ जांदा है, इत्थे कुछ ऐसे लोक भी पए ने जिन्हां दा घर परमात्मा वसा दिंदा है। वो ऐसी गलती करदे ने, ऐसा औगण करदे ने, अपने घर नूं उजाड़ दिंदे ने। सत्संगत कई लोग तरसते ने कि वाहिगुरु वाहिगुरु कृपा करे कोई झोली विच बच्चा देवे। तो जिस तरह मैं पहला बेनती की कि कई भरिया हुआ परिवार ही छड़ के टुर जाते। नानक दुखिया सब संसार, एक बारी पढ़िए। आज मैं अर्ज करांगा दान की है, अजय सो रोवे भीख्या खाए ऐसी दरगे मिले सजाए। सिर्फ इसी पंक्ति का अर्थ करना है।

औरत रुके जिस तरह औरत अपने पति को बगैर नहीं रह सकती, ऐ अकाल पुरुष तू मेरा पति, इसी तरह मम्मी तेरे बगैर नहीं रह सकती।

कुवत दिन साल ओ कैसी प्रीत कर दीनी अकाल पुरख देना गुरु अर्जुन साहब जी अपने मन की तरफ क्यों ध्यान कर दीनी।

का दर्शन किते ने मेरे प्यारे जी, मैं नहीं किते, मैनू दर्शन का करा, मैं अपना सिर ला के दे दिया, कादे वास्ते एक चिन्ह मात्र दर्शना।

परमेश्वर के नाल इस तरह प्यार करता है इस तरह जिवें मच्छी पानी के नाल प्रीत करती वो पानी तो बगैर नहीं रह सकती कि मैं अपने प्रभु तो बगैर जिंदा नहीं रह सकता।

मैं तेरे को बलिहार जाना मेरे वाल मुंह कारे फिर क्यों की थी मैं तेरे तू बलिहार जाना मेरे दर्शन का देगी।

मेरे शरीर का एक एक अंग कट दे, मैं सी नहीं करनी। पेंड कहते शरीर, इस शरीर भावें खत्म हो जाए।

पर्दे लाते पाप करते कहते मैनू कोई नहीं देखता पर ये भुल जाते परमेश्वर का अंतरयामी।

0: भगत लोचन जी बयान करते हैं कि जेड़े लोग दुनिया नाल प्रेम करते हैं उन्होंने मिलता की
1: जो लक्ष्मी सिमरे
0: लक्ष्मी कहते माया जेड़ा इंसान सारी उपर माया वाल ध्यान रखता है अंत वेले मंजी के पे कहते मना दुनिया तू एवें तो चल मन मुताबक माया भी ना कमा सके ध्यान माया वाल मौत हो गई ते अगला जन्म ओनू सप का मिलता है आप पता है सप जिहड़ा माया ते रहिंदा इस तरह ओ इंसान वासना दा बद्दा होया अगला जन्म

0: अब की बार बख्श बंदे को बहुत ना पाया, बहुत दुख उठा ले हैं, जमन मरन बहुत तकलीफा चल रही हैं। इस आत्मा नू अपने घर विच बुला लो, इस भटकदी भरम दी आत्मा नू अपने दर ते प्रवान कर लो, मुड़के जन्म ना होवे। बोलो सतनाम, जमन मरन तो मुक्त कर दियो। ये सारे पवाड़े जमन मरन करके ही सबनों वड़ा दुख जमन ते मरन दा ही है। बिच बचाले हो दुख तकलीफा कितनिया पाउंदा है, बार बार जमी जांदा, बार बार मरी जांदा है, कितनिया तकलीफा पाउंदा है। ते सच्चे पातशाह कृपा करो मेरे ते, मेरा जमन मरन कट दे। हुण जहांगीर आम बंदा क्या जमन मरना कट देगा, वो तो खुद जमन मरन दे गेट च पिया होया है। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: वो कहंदा पैसा लै लो, माया लै लै, पिंड लै लै। सिख कहंदा महाराज ने झूठिया चीजा दे विच मेरा तो जन्म ये मौलिक जन्म निकल जाएगा। मैनू महाराज परमावो ना, मैनू ये झूठिया चीजा दे विच ना रखो, मैनू सच्ची दात बख्शिश करो। बोलो हुण ये गुरु तो बिना कौन करेगा, जमना मरना कौन कट देगा, मुक्त कौन कर सकता है, जमा तो कौन बचा सकता है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: मुक्ति दा दाता कौन है? हुण जहांगीर मुक्ति दे सकता है, किते नाम दी दात वो दे सकता है? नहीं। महाराज कहंदे हन, जिस वस्तु को लैन तू आया राम नाम।

ढाल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कलगीधर पाछा काल दी गति अगाध कथन करते हैं। दशमेश पिता जी आनंदपुर साहब ते ऊने साहब दे विचकार जो बंभौर साहब गुरुद्वारा है सतलुज दे ऊपर, उथे बैठ के काल दा कौतक वेख के ए बाणी रची। आपने की तकिया कि मिर्ग आया है पानी पीन लई, ज्यों पानी पीन लगदा है तां इसते मुख विच मच्छी फस जांदी है। दम रुक गया, ऊपर बाज वेख रहा सी, उड़ रहा है बाज ते वेख रहा कि मिर्ग दे मुख विच मच्छी फस गई, ते ज्यों इस मच्छी नूं चपट मारन लई बाज आया तां ओह भी मिर्ग दे शिंगां विच फस के शरीर छड़ गया। अख फुरत विच ए तीन मौतां वेख के, ए काल दा नजारा वेख के साहब कलगीधर पातशाह कहंदे ने जल कहां, डूंगे जल विच रहण वाली मच्छी किथे, किवें काल ने सद लिया किनारे ते, आ जा भाई तेरा समा आ गया। थल कहां, तेज रफ्तार थलां ते दौड़न वाला, जमीन ते दौड़न वाला मिर्ग किथे, मौत ने बुला लिया। उच्चियां आकाशां विच उडारियां मारन वाला बाज किथे, मौत ने बुला लिया, आ जा भाई। ते अख फुरत विच तीन मौतां वेख के धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे हन कि जल कहां थल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही जबाए हैं। कबीर जी ने बड़ा सुंदर ख्याल लिखे है कि कबीर एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण तै चार, चार मरण ते शै मुए, चार पुरख दोए नाल। कबीर जी कथन करते हैं कि एक हरनी दे मरने ते नाल उसका बच्चा भी मर गया, इसलिए दो ओ मर गए। दोहां दे मरने नाल दो होर मर गए, क्योंकि शिकारी ने जाके शिफ्ट बनी है मिर्ग दी, जो निशाना मारिया मिर्गनी नूं तां मिर्गनी हरनी भी मर गई, ते जेड़ा इसके बच्चा होने वाला सी क्योंकि गर्भवती सी बच्चा भी मर गया। हुण जिथे बैठ के इसने निशाना बनिया सी उथे नेड़े ही सप निकलिया, जिसने शिकारी नूं दस्या, शिकारी नूं दस्या ते शिकारी ने झट तलवार कढ़ के सप दी भी उथे ही मित कर दिता, ते आप भी उसे वेले शरीर छड़ गया। तां कबीर जी कहंदे हन दोए मरण ते चार, हुण चार हो गए, इना चौवां दे मरने ते दो होर मर गए। शिकारी दी घरवाली जो गर्भवती सी, उसने जदों वेख्या मेरा पति गुजर गया है, हुण मेरा जीवन त्रिग है, ओ भी ओथे ही टकरां मार मार के आप मर गई। क्योंकि कबीर जी ये सब कुछ अखी वेख रहे सन, ये शेर दी गिनती कीती है बाणी दे विच। मिर्गनी दा बच्चा, शिकारी, शर्प, अहेड़न दे पेट दा बच्चा, ये चारे पुरख हन, शिकारी दे घर वाली ते हरनी दे दो, ये दो औरतां हो गईयां। इस दी साखी इस तरह है कि जिस वेले शिकारी अपने घर विचों निकल के बाहर शिकार खेडन गया तां अगों ही एक गर्भ वाली हरनी मिल गई, ते इस वेले शिकारी ने खिच के निशाना चलाया, उसी वेले हरनी मर गई, नाल ही उसका बच्चा मर गया। इतने नूं जिथे फंदक खड़ोता सी ना, उस जगह तो सप निकलिया, सप ने डंग मारिया, ते शिकारी ने झट तलवार मार के
ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫੰਦਕ ਦੀ ਔਰਤ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਭ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਅਗਾਧ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਈ ਮੇਟ ਡਾਰੇ ਉਸ਼ਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਪਾਰੇ ਗੜੇ ਫੇਰ ਮੇਟੇ ਉਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇਂਗੇ।

बाहर की अगन जा बुझे जल सरता कै, नाव में जो आग लगे कैसे कै बुझाई। बाहर की अगन जो बुझे जल

जाए सरन नरिंद गह मारे महीपत जियो कैसे को बचाई है। माया डर डर पत हार गुरुद्वारे जाई है। माया डर डर पत हार गुरुद्वारे जाई है। तहां जो बेआपे माया कहां।

दे बहर न पावे कछु उपाव मुक्त का कर ले। गुरु जी कहते हैं कुछ उपा कर लै। गुरबाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी है, ये सारे भगतां की बाणी, संतां की बाणी, गुरुआं की बाणी, भगत रविदास, भगत कबीर, बाबा फरीद जी, सारयां की बाणी गुरु महाराज ने एकत्र कीती है। ये सारे संतां भगतां के सतपुरशां के वचन हैं, गुरुआं के वचन जो हैं। सो मानस दे बाहर ना पावे कुछ उपाओ मुक्त का कर ले। कहिंदे कोई अपना उपा कर ले, कोई जतन कर ले। ये जो तैनू वक्त मिलिया, बहुत गोल्डन चांस मिलिया है, बल्कि बहुत ही अमोलक समा मिलिया है। इस समय दे विच सुनिया सी जे ये वक्त हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, तो मनुखा जन्म दे विच ही हो सकता है। 84 लाख जून दे विच, किसी जून दे विच ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होंदा, ना ही गुरु मिलता है, ना ही सत्संगत मिलती है, ना ही परमेश्वर का नाम मिलता है, ना ही इस दे अंदर कुंडलनी जागृत हो सकती है। बोल सतनाम श्री वाहे गुरु। तीन तरह की कृपा होंदी है, तीन तरह की मेहर होंदी है। एक तो अकाल पुरख की मेहर है, अकाल पुरख की मेहर है। अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर जो सृष्टि करता है, उसकी क्या मेहर है, सानू उसने ये अमोलक जन्म दे देता है। बोलो सतनाम श्री वाहे गुरु। ब्रेन दे देता है, दिमाग दे देता है, कितना तेज दिमाग है, कितना कुछ सोचता है। इस दे विच अपने साथ संगत के ये दिमाग जो ये सुंदर घाड़त है, ये सुंदर रचना है, शरीर की रचना है, सृष्टि की रचना है, जां फिर ये अमोलक नेत्र अखां दे दित्तियां हन, हथ पैर दे दिते हैं, जबान दे दिती है, कन्ना विच सुन दी शक्ति दे दिती है, ये सब अकाल पुरख की कृपा है। बोलो सतनाम श्री वाहे गुरु। इस जीव दे उते अकाल पुरख की कृपा हुई है जो ये मनुखा जन्म दिता है। इस नूं देवते भी तरसदे हन जो साडे उते अकाल पुरख ने यह कृपा की है, मेहर की है। गुरु जी कहिंदे ने राम आइया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन जिष्टानी। रामैया के गुण चेत प्राणी, उस परमात्मा ने

अवगण बड़ी तिखी छुरी मनुख दे दैवी गुणा नूं कट के नकारा करके सुट दिंदी मनुख मनुख ना रह के पशु हो जांदा औगणे आरा मनुख पशु गुणवान प्रभु अपने प्यारियां दे हिरदे च गुण वसा के तोरदा औगणा दे वस पै के बंदा थले गिर जांदा अपनी हस्ती तो नीवा हो जांदा अवगुण मनुख दे गुणा नूं कटदे ने दी हस्ती नूं कटदे ते सतगुरु अवगुणा नूं कटदे सतगुरु दे नजदीक होइए सतगुरु दे चरणी लगीए ते अवगुण कटे जांदे ने गुण निसरदे ने